0: Dom, gastric, ulcer, cancer, dhatu, pinas, jaundice, piles, pathari, fistula, paralysis, madumeha, jagrakshi chutaune ausadi, motopon ghataune badaune, blood pressure, yon rog, chhatiko dag, adiko safal upachar garincha. Dainik dakshya tatha anubhavi visheshagyaharubata swasthya parikshan garincha. Thap janakari ka lagi samparka mobile number 9841 39 6 47 9811 90 610 नमुना आयुर्वेद औषधालय राप्ती नगरपालिका 5 भण्डारा स्कूल रोड चितवन र भरतपुर महानगरपालिका 12 मालपोत कस्तुरी टोल चितवन
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार
2: स्वास्थ्य का हर एक पक्षलाई समेटेर तयार गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार
1: एसजीसीएस नमूना सामुदायिक अस्पताल को प्रस्तुति रेडियो मर्सेन्डी रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे उडारबाट एकैसाथ प्रसारण
2: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे

0: नमुना सामुदायिक अस्पतालको प्रस्तुति रेडियो मर्स्याङ्गी, रेडियो चौतारी र रेडियो भोटे उडारबाट एकैसाथ प्रसारण
1: प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 बजे।